अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए।

कली बैठी हमें लेके आसार, एक बारी मिल सजना। जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिल सजना। झूठ अंग साक सब झूठा संसारे, झूठा संसारे। रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे, झूठे नल कीता प्यार वे। रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना, एक बारी मिल सजना।

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल, नदी कहती मेरे संग चल,

मैं कुछ नगने सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से

जब थिरकते पांव धरती पर, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं।

बाटे दीत मंग से ओवि तेनु पुकना व पार चिंदुआ लगते तेरे हास प्यारी चिंदड़ी लगते

0: आखरी बंदा जी, जखू लदड़ा वाला आखे, हाय जखू लदड़ा वाला आखे, जित अन्न दा ते दी होनी। जखू लदड़ा वाला आखे, जित अन्न दा ते दी होनी। लग गई जो कालख तेनू, आपे ही तू तोनी। लग गई जो कालख तेनू, आपे ही तू तोनी। क्यों तू पंगा पाया, हाय क्यों तू पंगा पाया नाल पंजाब दे। हर बारी पंगा, हर बारी मत्था लावे, हर बारी मत्था लावे का तो नाल पंजाब दे। हर बारी मत्था लावे का तो नाल पंजाब दे। क्यों तू पंगा पाया दिल्लीए नाल पंजाब दे। क्यों तू पंगा पाया दिल्लीए नाल पंजाब दे। ऐसा गिण गिण बदले लैने तैतों नाल हिसाब दे। गिण गिण बदले लैने तैतों नाल हिसाब दे। साडे वालों जी पंजाबी सत कवैत वालों ते सतगुरु रविदास वैलफेयर सोसायटी वालों मैं किसानों की पूरी मदद करदा, पूरी सपोर्ट करदा हाँ। किसी तरह की कोई जरूरत पई तो असं हर तरह के नाल उन्हें तैयार बार तैयार खड़े हाँ। तो उन्होंने यही कहना कि तुसी अपने डट के मोर्चा लाओ ते परमात्मा भी तुहाडा, साडी गुरु नानक महाराज साडा गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडी सारी सपोर्ट करूगा जी। कोई गल नहीं जी, सत श्री अकाल जी। मेरी इन्नी हाजरी कबूल करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।
1: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੱਖੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਗਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੈ।

गल तेनू साडी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पन्ननी ही पैनिया। गल तेनू साडी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पन्ननी ही पैनिया। असी दिन रात

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुप ताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

है ये किस काम का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का।

जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे उसका

दिलिये खैर मना लैनी आगे सज के सिंह सरदार असी बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मता असी बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सथा सदके मुड

करदे नहीं, पर एक गल पक्की आ जुलमा नू जरदे नहीं, पर एक गल पक्की आ जुलमा नू जरदे नहीं।

गिंद अपनी मैं दीती गवाए एक बारी मिले सजना महला ते माड़िया सब नू विसार के सब नू विसार के सब कुछ वंड।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे हैं मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल, चले हैं सब

बड़े यतन से तेरी महिमा मैं कुछ नगमे सुने, तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर दाए, लुक लुक के सौदे।

के अड़या लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर हिजर दे सजना, तेरे तीर हिजर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर जा।

ताई पहनने आनी बकरी पारो वे पहनने आनी बकरी पारो वे जांदी नहीं बराई चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई सोरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।